0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी छौ।
3: ग्लोबल आइमी बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: दिस होम इन्टरनेट।

एसेंसियल्स। एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी, एलजी लाइफ्स गुड।

एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

किशोर, हेमराज डागी र आशा भिषे, लय हेमराज डागी, शब्द केम सारु मगर, एरेन्जर यमन खनाल, पीआर बेटी 6054-1485, उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली, प्रबन्धक यमन खनाल 9894-40400, केम सारु मगरको लोक दोहोरी एल्बम नतर्क न नतर्क सर्वत्र बजारमा।